भर नरग अखंड भर नरग अमंड अनुभव नास मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम अनशिज अंग आसन भंग उपमा पारगत मितोदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तिर तर तुरास अजान वाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुर बर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनझंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अनठट अपार आडीश धर्म अत तीठ कर्म अणबरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद प्रसाद करुणालय है अर्कालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विसंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है।